जैसा फिजी रेडियो और मैं हूं प्रोग्राम स्टार्ट का विनेश हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के साथ ब्रॉडकास्ट में मैं हूं प्रेम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में शामिल हो चुके हैं साहिल थैंक यू सो मच साहिल फॉर कमिंग जो आज हमारे जो पैनलिंग वो संभालेंगे और साथ साथ में शिवनल शर्मा इज आल्सो हियर और हम कुछ गेस्ट को इंतजार कर रहे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ कमिंग टू आवर स्टूडियो और वेरी सून हम उनसे बात करना जो शुरू करेंगे और आपको बतला दें आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा पूजा के विषय में दुर्गा पूजा इट्स नथिंग न्यू फॉर क्राइस्टचर्च आई नो हर साल आप लोग भाग लेते हो और इस बार भी आपको मौका मिलने वाला है कहाँ पे जाना है कब शुरू होता है और क्या क्या होने वाला है ये पूरी जानकारी आप सुनोगे आज हमारे इस जो इस ब्रॉडकास्ट में और जो लोग फेसबुक में हमसे जुड़ते हैं तो हम फेसबुक पे स्विच ऑन करेंगे थोड़े देर में देन जस्ट कीप वाचिंग आउट फॉर दैट एज वेल जी हाँ कुछ प्रोग्राम भी है जो ये क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी ने कुछ योजना बनाई है उसके विषय में भी हम आपको बतलाने वाले हैं सो जस्ट कीप लिसनिंग आपको वो सब समाचार इसमें मिलेगा सुनने के लिए और वैसे अगर देखा जाए क्राइस्टचर्च में देन आई थिंक द वेदर हैज बीन प्लेइंग अप कल रात्रि को आई थिंक कुछ वर्षा वगैरह हुई थी सुबह कुछ ठंड थी एंड देन धीरे धीरे जैसे समय गुजर रहा है लाइटनिंग अप तो कुछ धूप भी निकली है कुछ गर्मी हुई बट आई थिंक द टेम्परेचर हैजन रियली हैजन दैट मच बट फिर भी इट्स मच मच बेटर आई थिंक लेस टू कंप्लेन एंड होपफुली कल का वेदर कुछ और भी साफ रहे बिकॉज आई नो वीकेंड उसके बाद में देन वी विल गेट बैक टू मंडे एंड डेलाइट सेविंग जी हाँ आपको थोड़ा ज्यादा

जो समय मिल रहा है इफ यू आर डूइंग गार्डनिंग वगैरह वगैरह देन ऑब्वियसली यू गेट मोर टाइम और सोने के लिए आई एम नॉट सो श्योर वेदर यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम और अगर देखा जाए क्या हो रहा है क्राइस्टचर्च में प्लेंटी हैपनिंग बहुत कुछ हो रहा है बहुत फेस्टिवल्स है जो चल रहा है दिवाली है नवरात्रि है गरबा है बहुत कुछ हो रहा है और इसके विषय में हम शायद इसमें नहीं कवर कर पाएंगे तो आप हमारे जो फेसबुक पेज है वो चेक करते रहिए सभी पोस्टर्स वगैरह हम उसमें डाल देते हैं सो देट यू आर इन्फॉर्म्ड आपको पता चले क्या हो रहा है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं साहिल ने कुछ सॉन्ग हमारे लिए लाए हैं हम कुछ सॉन्ग्स बजा लें इससे पहले कि हमारे जो गेस्ट आ जाए हम उससे बात करने से पहले आप के लिए हम कुछ सॉन्ग पेश करते हैं और सॉन्ग के ख़त्म होते होते वी वुड गेट आवर गेस्ट्स इन एंड देन हम उनसे बात करेंगे और आपको याद दिला दे टुडे हम दुर्गा पूजा के विषय में बात करेंगे जो सिटी क्राइस्टचर्च सिटी में हो रहा है एंड आई नो यू हैव बीन लुकिंग फॉर टू इट और पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं

0: दोस्तों साथियों को पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम रेक्ट विनेश। और जैसे हमने पहले बोला था जब हम फ्रीक्वेंसी पे थे कि आज हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे दुर्गा पूजा की जो होने जा रहा है क्राइस्टचर्च सिटी में। और दिस इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय क्राइस्टचर्च बेंगोली कम्युनिटी। ये काफ़ी अरसों से कर रही हैं एंड इस बार भी कर रही हैं, लेकिन हमें पता चला है कि देयर इज गोइंग टू बी सम मोर एडिशंस टू इट। और भी काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है और भी कुछ है जो लाने वाले आपके लिए, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इस वीडियो में। और चलो हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, सभी को हम शुक्रिया करते हैं जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अभी फेसबुक पे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्पण मंडल जी जो क्राइस्टचर्च बेंगोली कम्युनिटी के आज चेयरपर्सन है। अमित की तरफ से अपोलॉजी, आई थिंक इज बिजी बिकॉज और भी एक प्रोग्राम की तैयारी हो रही है जो इसके बाद में होगा, जिसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और साथ साथ में हम बच्चे लोगों को भी स्वागत करते हैं हु आर आई थिंक दे प्ले अ की रोल to this particular program, kyunki they are sponsors. So Ramji, thank you so much for coming. He's from Gold Bend, Texas. Aur ye kafi martaba aa chuke hain hamare is studio mein. So thank you once again for joining us. And saath saath mein Shivam ji, who we meet, catch up hamari hote rehti jab hum kisi events mein milte. Aur saath saath mein Ari is from Squirrel and Shivam is from NZ Insurance. To chalo hum isse pe baat karte chalenge. To chalo hum shuru karte hain Arpan aap se, because I know you and your team obviously are super busy with this program. To aap bataiye ki abhi tak jo progress kaise chal raha hai.
1: Acha chal raha hai. Thank you Jalsa Fiji Radio for this opportunity. Taiyari to bahut achi chal rahi hai. और हम आपके लिए इस बार नए कुछ चीज़ें ला रहे हैं। कोलकाता का फ्लेवर, कोलकाता का हेरिटेज आपके लिए ला रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच। एंड जस्ट बिफोर यू गो एनी फेदर, हम आपको सिर्फ याद दिला दें कि हम जिस पूजा की बात कर रहे हैं, ये दिस इज द पोस्टर आप देख सकते हो। सो दिस इज ए क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय क्राइस्टचर्च बेंगोली कम्युनिटी। और डेट्स प्लीज आप मार्क कर ले, 17th ऑफ अक्टूबर रहेगा 9 AM टू 9 PM। एंड द प्लेस इज हम उसे हेगली नेटबॉल कोर्ट हम पहले कहते थे, अभी हम
1: मल्टीकल्चरल सेंटर 455 हेगली एवेन्यू
0: जी। हाँ,
1: नेटबॉल कोर्ट्स के है ठीक उसके बाजू में
0: जी। हाँ, और आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ इट इज ट्रांसपोर्ट एंड पार्किंग।
1: यस, पार्किंग इज लिमिटेड बट फ्री पार्किंग। और आसपास और भी पार्किंग है, और जल्दी आइए और इसका शो का आनंद लीजिए, इस पूजा का माता का आशीर्वाद लीजिए
0: जी। हाँ, और तो ये थे अर्पण जी, चेयरपर्सन ऑफ क्राइस्टचर्च बेंगोली कम्युनिटी। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी हम कमिटी मेंबर्स हैं जो बाहर इंतजार करें, उनसे भी हम बात करते चलेंगे। लेकिन हम अब बात करना चाहेंगे जो स्पॉन्सर्स हैं एंड फ्रॉम क्राइस्टचर्च बेंगोली कम्युनिटी। हम सभी स्पॉन्सर्स को जो आज नहीं भी आ पाए, सभी को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही ये जो कम्युनिटी है, ये हम कहेंगे ये जो पूजा है या तो फिर हम एक इवेंट बोल सकते हैं जो हमारे कम्युनिटी के लिए ला रही है। और इट्स नॉट काइंड ऑफ, वैसे तो अगर दुर्गा पूजा की बात करें देन ऑब्वियसली इट कम्स विद इट्स ऑन रिलीजियस सिग्निफिकेंस, लेकिन जिस तरह से ये पर्टिकुलर जो ग्रुप करती है दे मेक इट मोर लाइक ए मल्टी कल्चरल, वहाँ का एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है। और सभी रेसेस हम कहेंगे या जो कुछ भी, ऑल दोज पीपल कम टुगेदर एंड जॉइन इन एंड सेलिब्रेट दिस। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, ये क्राइस्टचर्च का हम कहेंगे माहौल है। इफ़ यू आर इन क्राइस्टचर्च यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप नए हैं देन यू हैव टू कम एंड सी फॉर योरसेल्फ। और अगर बाहर से अगर आप देख रहे हो देन ऑल आई एम गोइंग टू से इज अनफॉर्चुनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू मिस आउट अनलेस आप आ सकते हो। तो चलो राम जी, आप बताइए कि अभी आपका जो टैक्सीज वगैरह कैसे चल रहा है।
2: नमस्ते जलसा रेडियो, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर। टैक्सीज दे आर गोइंग गुड, प्रोबब्ली वी आर द लार्जेस्ट।
0: आई थॉट यू आर गोइंग टू से ओल्डेस्ट।
2: Oldest, in a couple of years we are going to be 100 years old.
0: 100 years, wow.
2: 100 years old,
0: yeah. So then there will be a celebration, right? Then you will come here.
2: Yeah, of course.
0: Yeah.
2: And you will also will be invited for that.
0: Yeah, exactly. Yeah. Because Gold Bend, Texas, I think since we've been here, we are listening to it. And actually, I didn't realize that how many years it's been going, which is 100 years, is a huge, we will say, it's a big thing.
2: Yes. It is 100 years and we are also very excited, and already in our office we are planning for the 100th year. And as you know that there's a

0: iconic picture, which it will be in our office, where 50 cars were parked in the Cathedral Square. We are coordinating with Christchurch City Council now to recreate that for the 100th year.
1: Okay. So, Cathedral Square, mein cars were parked. How many did you say?
0: At the time, they were 50.
1: 50.
0: All of one color from the Ford VH.
1: Wow.
0: So that's a huge thing at the time. And we have that photo in our office. All the 50 cars parked with their drivers beside that. So we want to recreate that as a iconic moment for us.
1: Ji ha. Jab bhi main aise kuch baat sunta hu, then I'll always go back and say olden days were golden days. Kyunki those things we talk about, agar abhi ke baat kiye to kaun utna effort kaun karega na, AI use kar lete hain. Congratulations, another 2 more years to come, and then we'll be celebrating those 100th years with you. So chalo hum barhte hain aage, and we'll talk with Shivam, NZ Insurance. NZ Insurance, obviously insurance, I think everybody knows insurance. और अगर हम क्राइसिस की बात करें, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू एर्थक्वेक डेज, तब काफी लोगों ने हार्ड लेसन सीखा था, एंड आई थिंक मेनी पीपल एट दैट टाइम उनको फाइन प्रिंट भी पढ़ना पड़ा. तो आप बताइए शिवम जी, व्हेन यू से इंश्योरेंस, आप कौन से जो इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन से कवर्स आप बेचते हो?
2: Hello everyone, thanks for giving me and the insurances or Shivam to an opportunity to speak about it. It's good to be a part of this community. It was my first year last year when I first attended it, and it was so good, and I just loved the vibe, to be honest. Bahut acha laga tha. Kabhi bhi maine pehle koi bhi Bengali event nahi attend kiya tha, so it was great to be there.
1: Did you try the food?
2: Yes. Just about apni family ke saath gaya tha, so we enjoyed a lot and looking forward for the next one. I hope there will be more food this year again. And yes, jaise aapne pucha tha insurance ka, main NZ Insurances ke taraf se ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल इंश्योरेंस है, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हैं. वी आल्सो डील विद द बिजनेस इंश्योरेंसेस लाइक एसेट्स लायबिलिटीज, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक बिजनेस चलाते हो, बिजनेस हु एक्चुअली जनरेट एन इनकम फॉर यू, टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. सेम अप्लाइज टू पर्सनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. अगर आप कमाता, इनकम कौन कमाता है, वो हम कमाते हैं. अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए हम इंश्योरेंस की एडवाइस देते हैं. हम देयर इज अ नो फीस फॉर अवर एडवाइस, नो ऑब्लिगेशन चैट. इफ यू गाइस लुकिंग फॉर इंश्योरेंस और वॉन्ट टू रिव्यू योर एग्जिस्टिंग कवर, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस.
1: थैंक यू सो मच शिवम जी. और अभी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कुछ कुछ कलाकार हमारे ही हमने कभी, इफ यू गो बैक टू इंडिया, तो ऑब्वियसली कलाकार इट्स अ बिग डील ओवर देयर. बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एक्टर्स हैं, एंड देन वी हैव सिंगर्स एंड बहुत लोग हैं. आई थिंक इट्स ग्रोइंग एंड वेरी सून आई थिंक वो भी एक मार्केट में आने वाला है. इट्स गोइंग टू कैच अप एज वेल. सो शिवम, कैन समबडी इंश्योर दैट एज वेल? बिकॉज अगर आप कलाकार हो, आप गा रहे हो, एंड सडनली योर वॉइस गोज अवे, then you lose that income.
2: Not yeah, that comes under the personal insurance na. Income means so the personal insurance is all about sickness and health, sickness, illness, injuries, anything like that. Agar uski awaaz chali gayi hai to definitely he is sick, he got something wrong, so uske paas health insurance hoga. Yes, he if because New Zealand mein jo insurance hai is totally operates different way. अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर इंश्योरेंस इज 100% फाइनेंशियल सपोर्ट. जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो दे फाइनेंशियली कम एंड हेल्प यू इफ यू इंश्योरेंस. इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इंडिया में अगर उस आर्टिस्ट की बात करते हो. लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पर है, आर्टिस्ट यहाँ से कुछ कर रहा है, सो दे ऑलवेज हैव एन इंश्योरेंस. इवन की जो इवेंट, जैसे ये इवेंट हो रहा है, चाहे वो दुर्गा पूजा है, चाहे कोई, ये इवेंट भी सारे इंश्योर हो जाते हैं.
1: सकते हो सकते हैं
2: होते हैं.

0: बिकॉज हमने लास्ट वाले जितने भी ये गुजराती इवेंट हुआ है हमारे यहाँ पर,
1: गरबा
0: नो जो पहले अभी रंग ताली हुआ था,
1: जी
0: वो ट्रायो ग्रुप ने करवाया था, तो अभी इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है जो जो
1: इज इट पब्लिक
0: वेन्यू,
1: लायबिलिटी है
0: यस, जो वेन्यू वाले हैं उनके बिना वो किसी को भी हायर नहीं करने देते. सो आई हैव डन दैट फॉर देम, आई हैव डन अदर फ्यू इवेंट्स. वेदर की वजह से भी कई बार इवेंट हो जाते हैं जो बाहर होते हैं, तो वो भी कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है. एनीथिंग ब्रीथ और डोंट ब्रीथ कैन
1: सो
0: इंश्योर.
1: देयर यू गो. अगर आप भी सोच रहे हो शायद कलाकार लाने के लिए फ्रॉम इंडिया, देन शिवम इज द पर्सन बिकॉज इज ऑलरेडी डन इट. तो यू कैन स्पीक टू हिम बिकॉज जो ऑलरेडी कर चुका है देन इट्स क्वाइट ईजी. आई नो मेनी पीपल आर थिंकिंग एट होम और सोचते हैं देन रातों रात डिसीजन बन जाता है. हमारे फिजी लोग ज़्यादा करके डिसीजन कहवा पीते पीते बना लेते हैं. मे बी आप लोग से चाय पीते पीते बनाते होंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हेन यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल. अपना होमवर्क करो, रिसर्च करो एंड देन यू कैन इवन स्पीक टू शिवम बिकॉज इंश्योरेंस इज अ बिग डील इन द सेंस इफ समथिंग गोज रॉन्ग then you might go out of pocket. और I think weather is another example. अगर weather ठीक नहीं है और crashes का तो वही हो रहा है अभी, it goes up and down. अगर बाहर देखे तो अभी धूप निकल रही है और सुबह कुछ और था, so it changes. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम आरी से, आरी जी हम आपसे बात करना चाहेंगे. You are from a squirrel. Squirrel, तो I think it's kind of a animal. नहीं मैं, but we are talking about in mortgage.
2: हाँ जी.
1: अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की एंड दैट्स वेयर स्क्विरल कम्स इन. आई थिंक इट्स क्वाइट हाईली रैंक्ड इन क्राइस्टचर्च. आई थिंक अगर आप कंपेयर करेंगे देन आई थिंक यू आर काइंड ऑफ कैटरिंग क्वाइट आई थिंक परसेंटेज.
2: यस, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इट्स बीइंग एन ऑनर टू स्पॉन्सर क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. डेफिनेटली स्क्विरल जो मॉर्गेजेस है वो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा मॉर्गेज ओरिजिनेटर है. वी आर जस्ट नॉट मॉर्गेज एडवाइजरी फर्म, हम लेंडर्स भी हैं. हमारे पास वी लेंड आवर ओन मनी. तो क्राइस्टचर्च में यस डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप.
1: जी हाँ डेफिनेटली. एंड व्हेन यू से लेंडर्स देन लाइक आर यू गाइस काइंड ऑफ कॉम्पीटिंग विद अदर लेंडर्स एंड बैंक्स एंड इंटरेस्ट रेट्स वगैरह आप लोगों का, हाउ डू पीपल वेक दैट आउट?
2: हाँ जी डेफिनेटली. जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंट फाइनेंस देख रहा है ना, किसी ने एक दो या तीन या पाँच छः टाउन हाउस बनाने हैं, वो चीज़ों में बैंक मोस्टली फंड नहीं करता. तब आप नॉन बैंक लेंडर्स देखते हो, जहाँ पे
1: सेकंड टी हम जिसे बोलते हैं.
2: हाँ जी, तो स्क्विरल आता है इवन फॉर फर्स्ट होम बायर्स. या फॉर एग्जाम्पल किसी ने मान लो एक दो दिन में ऑक्शन में जाना है ना, सो वी हैव अ रियली कूल प्रोडक्ट कि हम 24 आवर्स में खुद अप्रूवल दे सकते हैं, जो कि काफ़ी मेजर बैंक्स उसको
1: देखेंगे. चलो हम इस ऑप्शन में भाग लेना चाहेंगे बट वी सडनली नीड दैट मनी बिकॉज हमारे जो पैसे इंडिया में बचे हुए हैं, इट माइट टेक अनदर मंथ. तो इन बिटवीन जो फाइनेंस की जरूरत होती है देन ऑब्वियसली स्क्विरल कैन कम इन बिटवीन, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट. बट आपको बात करना पड़ेगा आप पर्सन लाइक आरी. और जैसे आप एडवाइजर्स भी हो, आप लेंडर्स भी हो, तो हाउ डू यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट?
2: कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, जो कि लैंडिंग टर्म है. जैसे आप बैंक की बात कर रहे हैं ना, उधर भी एक क्रेडिट टीम होती है जो अप्रूवल एक लैंड टीम मेंबर अप्रूव करके फिर क्रेडिट टीम के पास जाता है. ऐसे ही हमारे पास भी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्रेडिट टीम है.
1: जी हां डेफिनेटली. तो अगर आप एडवाइस दे रहे हो देन डेफिनेटली यू आर नॉट लैंडिंग, आपका लैंडिंग टीम कोई और होगा.
2: हाँ जी, अप्रूवल हम देते हैं देन वो सेकंड अप्रूवल क्रेडिट टीम से
1: क्रेडिट टीम से आती है. तो आप ऐसे लेकर आप घूम नहीं रहे हो ना साथ में?
2: नहीं
1: नहीं के पास. जी हाँ ओके, सो देयर यू गो. सो दैट्स द अदर वे टू एक्सप्लेन टू यू. सो यू कम टू आरी, ही डज द पाइप वर्क बट पैसे इसके पास नहीं है, ही गोस टू द अदर टीम. सो वो टीम है वो आपको एक्चुअली पैसे देंगे एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू जंप थ्रू द हुप्स एंड डू द पाइप वर्क, जो कुछ भी करना पड़ता है. बट आई थिंक वन एडवांटेज जो मैं हरदम नोटिस करता हूँ इन गोइंग टू प्रोफेशनल्स, आपको खुद बहुत कम हाथ पैर चलाना पड़ता है ना, बिकॉज यू डू टेक केयर मोस्ट ऑफ द टास्क फॉर देम.
2: डेफिनेटली अगर कोई बिजी है ना, एवरी पर्सन इज वर्किंग,
1: जी अभी तो सबके
2: पास नहीं टाइम होता, तो वो सारा लेग वर्क कौन सी बैंक आपके लिए अच्छी रहेगी वो सारा हम देख लेते हैं. जहाँ की आप एक पर्टिकुलर बैंक के पास जाके वो अपना ही प्रोडक्ट बताएंगे ना, वो नहीं बताएंगे कि अच्छा आप दूसरी बैंक के पास जाओ वो अच्छे हैं, वहाँ पे हमारी एडवाइस फिर आती है काम.
1: जी हाँ, और आता है काफी एक टिपिकल क्वेश्चन होता है कस्टमर की और मैं भी, आई डोंट नो, जो लोग ऐसे जगह काम करते हैं टाइम टू टाइम आपको ये क्वेश्चन आता होगा. कस्टमर आते हैं आपसे बात करते फिर आपसे पूछते कोई और है जो ये नया प्रोडक्ट बेच रहा है या ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. तो हम देन ऑब्वियसली हमें झूठ तो हमें नहीं बोलना चाहिए, बट व्हाट कैन वी से, एंड देन वी से हां है बट वी कांट गिव आउट.